आप ही विसाखी का पुरब मना रहे हो। अलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन ते शब्द भी उन्होंने ही है अलगीधर पातशाह जी का। दोवें शब्द राग विच दास पढ़ेगा, दोवें शब्द कलगीधर पातशाह जी ने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा क्योंकि आप जी नूं कई बार समझ नहीं आवेगी कई तुका दी। अस्थाई दी तुक है, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, कि गुनन को पहार है। अकाल उस्तत ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है, दीनन को दाता है, ते दुष्टां दा ओ नाश करता है, ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करता है, ते ओ गुनां दा पहाड़ है। पहाड़ मतलब दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुनन को पहाड़ है। तेज हूं को तर है, के राजसी को सर है, के शुद्धता को घर है, के सिद्धता की सार है। कामना की खान है, के साधना की शान है, दृढ़ता की बाण है, के बुद्ध को उधार है। सुंदर स्वरूप है, के भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है, के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है पटियाल। पटियाल भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाट नाल, मारव ठाट नाल, ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छपता। उस तो बाद इसे ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा जपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, के गुनन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होवेगा वो होगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अवै बिनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे कर नानिद, मेरी अवै बिनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इक ताले विच आप जी श्रवण करो।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा है। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा है। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होने तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले का आसरा है। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नूं गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

0: इतना अंधेरा है, तो आप जी दे कोल की इंतजाम है इस अंधेरे नू दूर करन दा, चानन जगान दा? तो गुरु महाराज जी आखदे हन,
1: दीवा मेरा एक नाम,
0: कहिंदे नाम ही एक ओ दीवा है जिहड़ा ह्यूमन लाइफ दे विच्चों डार्कनेस नू, सोसाइटी दे विच्चों डार्कनेस नू, पूरे ग्लोबल लेवल दे उत्ते डार्कनेस नू, इग्नोरेंस नू, इलिटरेसी नू जो दूर कर सकता है वो सिर्फ नाम दा दीवा है। कहिंदे मैं नाम दा दीवा लेके आया। अते आप देखते हो जदों दीवा बलदा है तो आहिस्ता आहिस्ता केड़ी चीज है जिहड़ी बर्न हो जाती है, जिहड़ी सोख हो जाती है, जिहड़ी खत्म हुंदी है, वो तेल हुंदा है। तेल खत्म हुंदा जांदा है। महाराज जी आखदे ने साडी सारी जिंदगी दे जिहड़े दुख हन उहनां नूं समझो तेल, दे विच नाम दा दीवा जगा दिओ, नाम दी बत्ती जगा दिओ। नाम दी बत्ती सारे ही दुखां नूं बर्न करके रख देगी, जिस तरह जगदा होया दीवा तेल नूं बर्न कर दिंदा।

0: फिर महाराज जी ने पूछिए, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, टलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए? महाराज जी आखते हैं साडे घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम त्योना ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्योंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदो होंदी है जदों किसी का नाम दिल च वस जाए, वो पूजा होंदी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम ते आइए बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां के संबंध की ख्याल है स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने वास्ते दुखां का छुटकारा पाने के वास्ते लोग तीर्थां ते जाते हैं पिलग्रिमेजिस ते जाते हैं जिन्हां नूं होली प्लेसिस आख्या जाता है। इस देर सच है महाराज जी आखते हैं साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही कहते हैं। तीर्थ नाम जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए महाराज जी आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां से सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी, और किसे गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनया, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं वो ये कहते हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गयो केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहते साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं, नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहते नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस। समा समाप्त, आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते सो हुण तक असा यह सुनया है कीर्तन का पहला हिस्सा के गुरु बाबा जी दे घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम दी छड़ी तो बिना चलण दी कोशिश करदे हन ओ गिटे गोडे जरूर तोड़ाणगे, ओह गिरणगे, चोटां खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए अते गाइए, फिर कीर्तन दा थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने के बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगानु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिरेकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो गया, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, एक किवें मैनू प्राप्त हो गया। उस दे वास्ते इंसान के अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिए है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिए है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिए है। जो इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है, वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सैटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

मर ना जाए इतना विस्तृत राम, वो की कर दे, मर क्यों नहीं जाते? बेशक को मर जान तो कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्हां नूं राम विसरिया होया है। मर ना जाही जिन्हां विसरत राम, वो जी के करनगे भी की, सड़नगे, तपणगे, जलनगे अते होर कर्म पैदा करनगे अपने आप ही। कहिंदे बेहतर मरे ही जान। मर ना जाही जिन्हां विसरत राम, जिन्हां नूं राम विसरिया होया है। नाम बिहून जीवन कौन काम, नाम तो बिना जीवन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई कम नहीं है। नाम बिहून, नाम तो सखना जड़ा जीवन है। कहते जीवन कौन काम, नाम बिहून जीवन कौन काम। एक पंक्ति और सुन वाली, आप जी सुन के हैरान जरूर होवोगे। कहते हैं

बाबा जी दे चरना च रहा। दो चार दिहाड़े नानक सर ठाठ विखे बाबा जी दे चरना विच सेवा करदे रहे पति पत्नी, ते नाल नाल हर वेले पंक्ति पढ़दे सन प्रभ के सिमरन रिद सिद नौ निद। ते परमेश्वर दी बख्शिश होई क्योंकि महापुरखां दी गवाही सी। साड़ी अरदास परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि साड़ा परमेश्वर नाल कोई संबंध ही नहीं, पर नाम जपण वाले ओ तां हर वेले चेते रखदे हन सतनाम श्री वाहिगुरु। उनां दी अरदास अकाल पुरख कदे बिरथी नहीं जान देंदा। ता ए नाम जपण वालियां दी शरण विच आए सन परमेश्वर ने बख्शिश कीती। महापुरखां दी गवाही।

धन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनू दे दिए। इन्हां ने आख्या महाराज जिवें आप

अलपग हां कुछ समझ नहीं लगी। आखिया जिवे गड्डे दे हेठां दोने पहियां दे विचाले तुरा होंदा है ना, इस तरह आपा तुरा

सुखमनी दा नाम पानी दा तुरा बनना है। सेवका ने आख्या जी सत वचन, बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज करदे हो ना, हुण लगातार सुखमनी दी बाणी

बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वालियां ने निरंकार नाल जोड़िया, क्योंकि आए तां असी निरंकार दे घरों हां, पर संसार विच आके परमात्मा नूं भुल जाने। ता ब्रह्म ज्ञानी महापुरख रब दे प्यारे ए सानू याद दिलाउंदे ने, बई तू नाम जपना है। ऐसे महापुरख सन बाबा जी जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा करके श्री गुरु नानक सचे पातशाह नू परतक प्रगट कीता। इतना कठोर तप आप करदे सन कि जेकर किधरे मन ने कह भी देना, मैं अज नाम नहीं जपना, ते बाबा जी ने खूह दी डार उत्ते जा बैठना, खूह दी बन्नी जा बैठना कि मना जे नाम नहीं जपेगा, सोवेगा, आलस करेगा, ते फिर तू खूह विच गिरेगा ते मर जावेगा। ऐसा डर पाके मन नू निरंकार नाल जोड़ना। बाबा जी 12:10 ते नितनेम विच आ जांदे सन, ते 12:10 ते जदो आपने सिमरन करना, ता कलयुग ने नींदर नू भेजना भी जा इना नू नाम ना जपन दे, ते बाबा जी ने केसां नू किली नाल बन लेना, आखना जदो नींद आवेगी ता केस खिचे जावणगे ते दर्द होवेगा, ता मैं फिर उठ के नाम जपन लग जांगा। साध संगत बोलो श्री वाहे गुरु। क्योंकि नाम जपन वाले हर वेले यही अरदास करदे हन, निरंकार ना विसरी ना विसारी आप दया नू आप दे करी। इस तरह अनेकां ही रूहां नू आप भी जपिया बाबा जी ने, ते दुनिया तो भी जपाया। जे किसे हिंदू ने आउना ता बाबा जी ने कहना, बई गायत्री दा पाठ करिया कर। जे किसे मुसलमान ने आउना ता बाबा जी ने आखना, भी 5 नवाजां गुजारिया कर। जो कोई तुहाड़ा धर्म है उस विच परपक रहो,

पूर्ण प्यार ते सत्कार विच गज के आखो सतनाम साधु कौन है जिने मन नु साध्या है महाराज मैनू उन्हां दा मेल करा श्रोमणी कमेटी ने भी अरदास विच

अल्लाह कराया करो, बेनती कराया करो, उपराला की एहो जे उपराले करो जिदे नाल साडी वाइब्रेशन जेड़ी है नाम अली बनी रहे। आला दुआला हवा किरना वाइब्रेशन लहरां तरंगा मोबाइल टू मोबाइल गल हुंदी है, पवन काम कर रही है, वाइब्रेशन काम कर रही है। कोई ना समझा हुए अपने घर एह किताबां रखो जिन्हां किताबां नूं पढ़न नाल साडी वाइब्रेशन नाम अली बने।

किताब चुकी है, कितों पढ़ी है, बख्शियां दियां किताबां किधरों वर्का फरोल लो, उस वेले तुहाडे आले दुआले तरंगा नाम दियां बणनियां शुरू हो जाणगियां। टेलीविजन दे विच रिमोट दे उत्ते ज्यादा स्टेशन ओह ही लगन के जिहदे नाल साडे घर दी वाइब्रेशन कीर्तन ते नाम वाली बनी रहे।

गुरु जाने काल पुरख जाने। बाबा दीप सिंह जी के जीवन से एक नवा उपराला हो रहा है। 5 लाख का सर्कल ले रहा है। एक पिक्चर तैयार करने का जड़ा ना वो उपराला शुरू होया। वेखो गुरु कृपा करे तकरीबन 50 तैयारियां जड़िया हुई हैं। थोड़ा युग आ गया अगला मीडिया का। एक रीज है, एक सच्ची सुची आत्मा ब्रह्म ज्ञानी संत सिपाही महान जरनैल बाबा दीप सिंह जी का जीवन कैसा सी, एक घर घर सुनिया पहुंचे। नौजवान पीढ़ी हो जरा फिल्मा की शौकीन है, तो यह सारी धार्मिक फिल्म जड़ी ना बाबा दीप सिंह जी जीवन से। भाई प्रीतम सिंह ने, किरती सिंह ने शीलना बनाते, 4 साल हो गए उन्होंने लगे। हूं आप ही बाबा जी ने कोई लिशकारा चैनल तो डायरेक्टर भेजता है, उन्होंने सारा भेज दिया। अगला इतना रल के कारज नवा यूनिटी समझ लो आने वाले समय का। ओदी मीटिंग करते पे सारी स्टोरी पढ़ी जा रही थी, एडी मोटी फाइल बननी है। किसी मुंबई तो एक्टर आएंगे, यह नवा ही उपराला, इतों के गुरुद्वार की आग्या ले जाएगी सारी श्रोमणी कमेटी के ध्यान चो कढ़ के शुरुआत हुई है। ओदी मीटिंग कर रहे एक विचों मुंडा बोल पिया, कहते भी जदों जंग का सीन विखाणा बाबा दीप सिंह जी विखाणा तो नहीं अपने च मनाई है, तो ऐसा है ही नहीं जो उन्होंने तक पहुंच सके। जदों सीन विच दूजियां दे सीस नाम जपण वालियां दे हथों लथदे विखाओगे, कहिंदे उत्थे मैनू लै आणा कि मैं उन्हां दे खंडे दा ही सीन जी शिकार ध्यान देना। ओदी एडी भावना कि तेरा खंडा भी जिन्हों वजे पता नहीं कुदरत जाने ओ भी तरिया होवे, ओ भी किथे पहुंचिया, खंडा ते नामां जपण वाले दा ही ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜੇ ਵੇਖ ਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ 3400 ਇਹ ਸੰਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੂਲੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਖੋਜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਂ, ਕਿ 3400 ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ।

0: कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर
1: एक कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

धरती धर्म दी होती। जिथे मेरा सतगुरु आके सज गया, जिथे मेरे सतगुरु के दर्शन प्राप्त हो जान, वो धर्मशाल हो गई, धर्म की धरती हो गई, वो शरीर धर्म की धरती हो गया, वो जीवन धर्म की धरती हो गया। उथे धर्म पुंगरेगा, धर्म वधे फुलेगा, धर्म फलेगा जिथे सतगुरु आ गया। ते सतगुरु कदों आउंदा? जदों गुरु की जुगत आ जाए, समझो गुरु आ गया। भाई साहब भाई गुरदास के जीवन च गुरु आया, ते उन्होंने जो कुछ गुरु नूं माणे, जो कुछ गुरु नूं जाणे, ओह कुछ गुरु नूं बयाने। पहला तो भाई साहब कहंदे ने कि सतगुरु एडा दयाल है कि जे गुरु वाले एक कदम भी पटीए ना।

जग में परवरे। निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट होए ते फिर ओही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रही है ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहा। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सी गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके सातों अलग होना लोड़ते हो, असी की करांगे? साहब कहने लगे की चाहते हो कि महाराज दर्शन किधे करांगे, गल्लां किधे नाल करांगे, पूजा किसकी करांगे? साहब कहने लगे पूजा तो तुहानू मैं पहला ही एक अकाल की समझ आ चुका, पूजा अकाल पुरख की करनी, मेरा दर्शन करना है तो खालसे का दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने गुरबाणी की विचार करनी, गुरु के बचना के अनुसार ही हो गए, गुरु के बचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे गुरु नाल गल्लां करदे जापो। इत्थे भाई साहब कहिंदे ओही वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु का रूप धारण करके प्रगट होया ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तो गुरसिखां नहीं मनेगा, साध संगत की बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दियां लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नूं करन कारण समर्थ वाहिगुरु साध संगत दा करे कराए, सारा कुछ उहदे भंडारियां च भरिया पिया पर साध संगत दा दे दवाया, साध संगत जिन्हू चाहे दवा देवे जो चाहे लै लवे, पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया, पार ब्रह्म गुरु दा रूप होकर के साध संगत विच गुर शब्द बैठा है, जिसनू लोकां ने जग भोग जोग ध्यान कर अनेकां कर्मकांडा दे नाल अनेकां जतना दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया, किसे नूं लब्भा नहीं, किसे नूं दर्शन नसीब नहीं होए, गुरसिखां ने उन्हां नूं लभ लिया, संगत विचों लभ लिया, गुरु शब्द विचों लभ लिया, और ऐसा लभिया इन्ने नेड़े हो गए, इन्ना प्यार पा लिया, इन्नी सांझ पा ली, प्यो पुत्रावां एकमेक हो गए। और फिर एक होर गल, वह जग भोग जोग ध्यान करने वाले तो कई बार संसार नूं छड्ड के बाहर भटकते नजर आए, गुरु का सिख संसार च रहिंदिया होए घर बार च रहिंदिया होए परस्पर सत्कार का अधिकारी बन के एक दूजे विच सतगुरु के दर्शन करता होया एक दूजे पैरी पैंदा नजर आउंदा, और इस संसार च रहिंदिया होए प्रभु के प्यार नूं मानदिया गुरु के प्यार नूं मानदिया होया माया विच उदास रखाया। पर एक गल है, जे तां गुरु नाल गल्लां करनियां ने ते गुर शब्द नूं विचारांगे, जे गुरु के नजदीक होना है गुरु नाल विचार दी सांझ पाउणी है प्यार दी सांझ पाउणी है ते गुर शब्द दी सांझ ही पाउणी पैणी, लेकिन जे कदे गुरु नूं प्रसन्न करना होवे ते महाराज पावन बाणी च कहिंदे ने साहिब कहिंदे ने गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै जो सिखां नूं लोचै सो गुर खुशी आ, जिहड़ा गुरसिखां नूं प्यार करदा गुरु की खुशी लैंदा, विच संगत हर प्रभ वसै जी, इसे संगत गुरसिखां विच वाहिगुरू आप वसदा है, इन्हां दी खुशी गुरु की खुशी पार ब्रह्म की खुशी, इसे करके गुरमुखां गुरसिखां सत्संगियां ने गुरु प्यार वाले शब्द विचार वाले नाम की कमाई वाले की खुशी लैण दा यतन कीता सदा। और भाई साहब पुन भी बड़ा कहते, भाई साहब कहते जे कि गुरसिखां की सेवा च लग जाइए तो गुरु वालों बड़िया खुशियां प्राप्त होंगे, एडा वड्डा पुन है जिहड़े उस वेले प्रचंड पुन्नां दीआं गल्लां सन, जिहड़े जतन लोग प्रभु प्रसन्नता दे करदे सन

करता है। जैसे कपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंत को जोड़ जोड़ कर कपना बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेंगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई है। मनुष्य का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है। सुलझाना इसको आता नहीं, और आत्मिक जीवन जीने के लिए सुलझाना बहुत अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। देखना कैसी उलझने हैं। पितर शब्द में बताया श्री रूपी कुआं है, कूटा एक श्री रूपी कुआं है। जो कैसी उलझने हैं, कैसे सुलझेंगी, अपने आप तो सुलझेंगी नहीं। श्री रूपी एक कुआं है, उस कुएं में पांच चरखी लगी हुई है, पांच ज्ञान इंद्रों की, और ऐसी बुद्धि जो विवेक नहीं, जो बुरे और भले की विचार करने वाली नहीं, वो इस श्री रूपी कुएं से एक टूटी हुई रस्सी, टूटी हुई लाज के साथ बुरी वासनाओं का पानी भरती जा रही है। और देखना रस्सी तो टूटी पड़ी, लेकिन टूटती जा रही है, लेकिन श्री रूपी कुएं से ऐसी बुद्ध जो विवेक नहीं, वो मंदी वासनाओं का, विकारों का, बुरे कर्मों का पानी भर रही है, परती जा रही है। एक पितर शब्द में और बोला, ओह जे दिससे खूहड़ी कौन लाज बहारी, लाज घड़ी श्यों टूट पड़ी उड़ चली पनेहारी। पनिहारी क्या करेगी जब रस्सी टूट जाएगी, लाज टूट जाएगी, क्या मिलेगा आपको? आखिरकार तो पछताना ही पड़ेगा। ऐसे ही उलझने हैं हमारी जीवन में। देखना किसी की 20 साल की लाज टूट गई, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, कम हो गई आंखों भाई, इतना बूढ़ा हो गया अभी भी
बुरी वासनाओं का पानी भरता है, अभी भी विकारों का पानी भरता है, अभी भी इसको शांति नहीं। देखना हम जीवन में कितना कुछ खा गए होंगे, कितना पानी पिया होगा, कितना भोजन लिया होगा, कितने मेवे खाए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? सब कुछ खाकर भी हम भूखे के भूखे हैं। देखो भाई, इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई आंखों

कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रिय वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रिय भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो वाहिगुरु, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाकस माया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं, एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचनचेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिग रहा था, माखियों का डिग रहा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा एक काला उस रस्सी को काट दिया, ओ खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अन दिन मूसा लाज चुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए, हम तो अपनी जीभ के चस्कों पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम की श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे, कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया, उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया, दूसरे मेंढक ने पूछा ये क्या करें, आप तो मरने लगे हैं, तो आपने मुंह क्यों खोला, कहते क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। ऐसा हमें बताया गया, बूढ़ा तो हो गया, देखना किसे समय भी अंत काल आ सकता है। आखो वाहिगुरु, पर हम ऐसी उलझन में बंधे हुए हैं कि हमें आयु तो कम हो रही है लेकिन वो बुरे विकार कम नहीं हुए। वो ऐसे ही है, देख लेना किसी को ये बताओ, कभी कह कर देख लेना, अरे भाई नाम जप ले, आखो भाई करो, बहुत कुछ खा लिया पी लिया, अब तो नाम जप ले, किसको पूछ ले। हम भी कहते हैं आप भी पूछ कर देख ले, हम पूछते हैं एक ही हमें उसका जवाब मिलता है, क्या करें अभी नहीं, अभी तो हमने बहुत काम करने हैं, अपने कुटुंब को पालना है, उसको काम लगाना है, अभी तो हमारे सिर पर हमारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमारे कंधों पर। हम सब काम कर लें फिर हम नाम जपेंगे, पहले तो काम तो मुका लें, काम मुका लेंगे अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेंगे, जिम्मेदारियों को तो फिर कर लेंगे, नाम जप लेंगे। लेकिन उससे ये पूछना चाहिए, क्या किसी ने गारंटी ली हुई है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे?